0: और ऐ बंदे, जिस चीज का तुझे इल्म नहीं उसके पीछे न पड़, कि कान और आंख और दिल इन सब जवारे से जरूर बाजपुरस होगी।
1: वला तमशी फिल अर्ض मरहा इन्नक लन तखरिक अल-अर्ض वलन तबलुग अल-जिबाल तूला।
0: और जमीन पर अकड़कर और तनकर मत चल, कि तू जमीन को फाड़ तो नहीं डालेगा और न लंबा होकर पहाड़ों की चोटी तक पहुंच जाएगा।
1: कुल्लु ذلك كان سيئه عند ربك مكروها।
0: इन सब आदतों की बुराई तेरे परवरदिगार के नजदीक बहुत नापसंद है।
1: ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه।

0: ये लोग जब तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं तो जिस नीयत से ये सुनते हैं हम उसे खूब जानते हैं, और जब ये सरगोशियां करते हैं यानी जब जालिम कहते हैं कि तुम तो एक ऐसे शख्स की पैरवी करते हो जिस पर जादू किया गया है,
1: انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا
0: देखो उन्होंने किस किस तरह की तुम्हारे बारे में बातें बनाई हैं, सो ये गुमराह हो रहे हैं और रास्ता नहीं पा सकते।

0: और अगर हम चाहें तो जो किताब हम तुम्हारी तरफ भेजते हैं उसे दिलों से महव कर दें, फिर तुम उसके लिए हमारे मुकाबले में किसी को मददगार न पाओ।
1: इल्ला रहमतन मिन रब्बिक इन फज़लहू काना अलैका कबीरा।
0: मगर उसका कायम रहना तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है, कुछ शक नहीं कि तुम पर उसका बड़ा फजल है।

0: इल्ला बशरन रसूला।
1: या तुम्हारा सोने का घर हो या तुम आसमान पर चढ़ जाओ, और हम तुम्हारे चढ़ने को भी नहीं मानेंगे जब तक कि कोई किताब न लाओ जिसे हम पढ़ भी लें। कह दो कि मेरा परवरदिगार पाक है, मैं तो सिर्फ एक पैगाम पहुंचाने वाला इंसान हूँ।

0: बाज लोग अटकल पिच्चू कहेंगे कि वो तीन थे और चौथा उनका कुत्ता था, और बाज कहेंगे कि वो पांच थे और छठा उनका कुत्ता था, और बाज कहेंगे कि वो सात थे और आठवां उनका कुत्ता था। कह दो कि मेरा परवरदिगार ही उनके शुमार से खूब वाकिफ है, उनको जानते भी हैं तो थोड़े ही लोग जानते हैं, तो तुम उनके मामले में गुफ्तगू न करना मगर सरसरी सी गुफ्तगू, और न उनके बारे में उनमें से किसी से कुछ दरियाफ्त ही करना।
1: वला तकूलन लिशैइन इन्नी फाइलुन ذَلِكَ غَدًا,
0: और किसी काम की निस्बत न कहना कि मैं इसे कल कर दूंगा।

और अपने परवरदिगार की किताब को जो तुम्हारे पास भेजी जाती है पढ़ते रहा करो, उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं और उसके सिवा तुम कहीं पनाह भी नहीं पाओगे।

और जो लोग सुबह शाम अपने परवरदिगार को पुकारते और उसकी खुशनूदी के तालिब हैं, उनके साथ सब्र करते रहो और तुम्हारी निगाहें उनमें से गुजर कर और तरफ न दौड़ें कि तुम आराइश जिंदगानी ये दुनिया के खास गार हो जाओ। और जिस शख्स के दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है और वो अपनी ख्वाहिश की पैरवी करता है और उसका काम हद से बढ़ गया है, उसका कहा ना मानना।

और इस तरह उस शख्स को उनकी पैदावार मिलती रहती थी। तो एक दिन जबकि वो अपने दोस्त से बातें कर रहा था, कहने लगा कि मैं तुमसे माल और दौलत में भी ज्यादा हूँ और जत्थे और जमात के लिहाज से भी ज्यादा इज्जत वाला हूँ।

0: उस वक्त खुदा के सिवा कोई जमात उसकी मददगार न हुई और न वो बदला ले सका।
1: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا।
0: यहां से साबित हुआ कि हुकूमत सब खुदाए बरहक की है, उसी का सिला बेहतर और उसी का बदला अच्छा है।

और उनसे दुनिया की जिंदगी की मिसाल भी बयान कर दो। वो ऐसी है जैसे पानी जिसे हमने आसमान से बरसाया तो उसके साथ जमीन की रुईदगी मिल गई, फिर वो चूरा चूरा हो गई कि हवाएं उसे उड़ाती फिरती हैं। और खुदा तो हर चीज पर कुदरत रखता है।

0: उसने कहा कि भला आपने देखा कि जब हमने पत्थर के पास आराम किया था तो मैं मछली वहीं भूल गया और मुझे आपसे उसका जिक्र करना शैतान ने भुला दिया और उसने अजब तरह से दरिया में अपना रास्ता लिया।
1: قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا
0: موسى نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے

तो दोनों चल पड़े। यहां तक कि जब कश्ती में सवार हुए तो खिज्र ने कश्ती को फाड़ डाला। मूसा ने कहा, क्या आपने इसको इसलिए फाड़ा है कि सवारों को गर्क

फिर दोनों चले। यहां तक कि रस्ते में एक लड़का मिला तो खिज्र ने उसे मार डाला। मूसा ने कहा कि आपने एक बेगुनाह शख्स को नाहक बगैर कसास के मार डाला, ये तो आपने बुरी बात की।

0: और दुहाई देने लगा। इस पर कौम गर्म हो गई, उनका मामला संगीन और उनका इरादा जंग पुख्ता हो गया और उतबा ने जिस सूझबूझ की दावत दी थी वो रायगा गई। इस तरह होश पर जोश गालिब आ गया और ये मारजा भी बेनतीजा रहा। बहरहाल जब मुशरिकीन का लश्कर नमुदार हुआ और दोनों फौजें एक दूसरे को दिखाई देने लगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, ये कुरैश है जो अपने पूरे गरूर और तकब्बुर के साथ तेरी मुखालफत करते हुए और तेरे रसूल को झुटलाते हुए आ गए हैं। ऐ अल्लाह, तेरी मदद जिसका तूने वादा किया है, ऐ अल्लाह, आज उन्हें ईंट कर रख दे। नेज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा बिन रबिया को उसके एक सुर्ख ऊंट पर देखकर फरमाया, अगर कौम में से किसी के पास खैर है तो सुर्ख ऊंट वाले के पास है, अगर लोगों ने उसकी बात मान ली तो सही राह पाएंगे। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की सफ़ें दुरुस्त फरमाई। सफ की दुरुस्तगी के दौरान एक अजीब वाकया पेश आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक तीर था जिसके जरिए आप सब सीधी फरमा रहे थे कि सवाद बिन गजिया के पेट पर जो सबसे कुछ आगे निकले हुए थे तीर का दबाव डालते हुए फरमाया, सवाद बराबर हो जाओ। सवाद ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आपने मुझे तकलीफ पहुंचा दी, बदला दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पेट खोल दिया और फरमाया, बदला ले लो। सवाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमट गए और आपके पेट का बोसा लेने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाद, इस हरकत पर तुम्हें किस बात ने आमादा किया? उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ दरपेश है आप देख ही रहे हैं। मैंने चाहा कि ऐसे मौके पर आपसे आखिरी मामला ये हो कि मेरी जिल्द आपकी जिल्द से छू जाए। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआए खैर फरमाई। फिर जब सफ़ें दुरुस्त की जा चुकी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को हिदायत फरमाई कि जब तक उसे आपके आखिरी अहकाम मौसूल ना हो जाएं, जंग शुरू ना करें। उसके बाद तरीका जंग के बारे में एक खसूसी रहनुमाई फरमाते हुए इरशाद फरमाया, जब मुशरिकीन झमघट करके तुम्हारे करीब आ जाएं, तो उन पर तीर चलाना और अपने तीर बचाने की कोशिश करना, यानी पहले ही से फजूल तीर अंदाजी करके तीरों को जाया ना करना, और जब तक वो तुम पर छा ना जाएं तो तलवार ना खींचना। उसके बाद खास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु छपर की तरफ वापस आ गए और हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह तआला अन्हु अपना निगरान दस्ता लेकर छपर के दरवाजे पर तैनात हो गए। सामईन, यहाँ पर एक वक्फा और वक्फे से वापस आकर अपने इसी सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP की दुनिया।

www.lucifer.edu.ek. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

तंत जी रोशनी की दुआएं, तेरे को हो दमन गुलनार और हवाएं गुलबहार। जब तक ये जहां है तू शाद सरसब्ज और खुशहाल रहे। अल्लाह तेरा निगहबान और तेरे दुश्मन

0: तुझे।
1: ऐ वतन, सागर की हर लहर की है ये दुआ कि तेरे रेगजारों में सुर के रंग फूटे, जंगल बयाबानों में मोहब्बत के नगमे गूंजे, भिटाई और सचल के

सारी वफाएं तेरे लिए और तू मेरी जीनत, तुझी से मेरा सारा हुस्न, तेरी मोहब्बत मेरा बेशबहा सरमाया और मेरी जानो माल सब तुझ

रहे हरियालियाँ और फूलों से लदी रहे डालियाँ, ये प्रेम धरती, ये वलियों का देश, यहाँ रब ने घर घर में उतारी हैं खुशहालियाँ।

0: आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, हमारे साथ मौजूद हैं असद ताशफीन साहब एंड आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो एक सब्जेक्ट है, जो कि ओवरऑल जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जो फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज है, उसकी जो सब ब्रांचेस हैं इंटरनेशनल रिलेशंस और जो पॉलिटिकल साइंसेज की ब्रांचेस हैं, उसके बारे में हम सर से बात कर रहे थे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से जो ग्रेजुएट कर चुके हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो कि अब अलमनाइज बन चुके हैं, सर वो किसी रिनाउंड प्लेस पे काम कर रहे हैं या किसी रिनाउंड जगह पे किसी ओहदे पे फाइज हैं?
2: हाँ बिल्कुल, हमारे अभी चूँकि डिपार्टमेंट इतना पुराना नहीं है, वी डोंट हैव टू मैनी अलमनाई येट, हमारा अभी सिर्फ दो बैच ग्रेजुएट हुए हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट हमारे स्टूडेंट्स बड़ी अच्छी में पहुँच चुके हैं। फॉर एग्जांपल मीडिया हाउसेज में काम कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स बाहर भी पढ़ने जा चुके हैं। अभी सिर्फ पिछले साल ही हमारे दो स्टूडेंट्स, हालांकि हमारे कोहॉर्ट इज़ नॉट वेरी लार्ज, उसके बावजूद टू स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग ऑन फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स इन फॉरेन कंट्रीज़। एक स्टूडेंट हमारी टर्की में फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे हैं और एक हमारे स्टूडेंट जो है वो हंगरी में फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे हैं फॉर डूइंग अ मास्टर्स डिग्री। तो यानी यूसीपी इज़ अ ग्रेट प्लेस टू गो एनीवेयर, इट्स अ स्प्रिंग बोर्ड, अगर आप बाहर जाना चाहें, फंडिंग भी लेना चाहें तो यहाँ स्टूडेंट्स को मिलती है और मुल्क के अंदर भी काम करना चाहें। एक स्टूडेंट मुझे अभी मिला कुछ दिन पहले और वो ही वॉज माई स्टूडेंट फ्रॉम द 8th सेमेस्टर लास्ट ईयर में था और वो माशाल्लाह निकलते साथ ही सुनता है कि सर मेरी तनख्वाह ऑलरेडी 1.5 लाख रुपए है और अभी इसको ग्रेजुएट हुए, लिटरली अभी कुछ 2 माह हुए थे। तो माशाल्लाह यूसीपी के स्टूडेंट्स दे आर डूइंग वेरी वेल। बिल्कुल।
1: अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जैसे जो बंदा मीडिया पढ़ता है वो एज ए जर्नलिस्ट काम कर सकता है, एज ए न्यूज़ एंकर काम कर सकता है, तो सर जो आईआर के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बताइएगा सर कि किस शोबे में जा सकते हैं, क्या क्या मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ और क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो वो अवेल कर सकते हैं? हाँ,
2: पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर, ये आई मीन देयर इज़ अ वेरी वाइड एरे ऑफ एरियाज जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे स्टूडेंट्स को शौक होता है, हमने देखा है, वो जनरली सिविल सर्विस का होता है। तो जनरली स्टूडेंट्स जो पॉलिटिकल साइंस और आईआर पढ़ते हैं उनका सक्सेस रेट हमारे सिविल सर्विस एग्जाम में बहुत हाई होता है, चाहे वो सीएसएस का एग्जाम हो या पीएमएस का एग्जाम हो, स्टूडेंट्स दे जनरली डू वेरी वेल। और आप अगर देखें जो पास स्टूडेंट्स पास होते हैं सीएसएस पीएमएस में, अक्सर लोगों ने पॉलिटिकल साइंस या आईआर रखा हुआ होता है, चूँकि ये जो सीएसएस का एग्ज़ाम आपका है या पीएमएस का, उसमें बड़ा हैवी एम्फोसिस होता है हिस्ट्री पे, पॉलिटिक्स पे, करंट अफेयर्स पे, इंटरनेशनल अफेयर्स पे। तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से बेसिकली आपकी सीएसएस की तैयारी सारी हो चुकी होती है और जब आप ग्रेजुएट करते हैं आपके आधे सब्जेक्ट सीएसएस के तैयार हो चुके होते हैं। तो वो एक एरिया है जहाँ पर स्टूडेंट्स बड़े शौक से जाते हैं। उसके अलावा आपने बताया कि मीडिया स्टडीज़, आईआर पॉल साइंस के स्टूडेंट्स मीडिया में भी बहुत आसानी से जा सकते हैं, बिकॉज उनको दुनिया के बारे में पता होता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, तो मीडिया में आसानी से जाके वो एंकर पर्सन या एनालिस्ट बन सकते हैं। उसके अलावा फिर जनरल सब्जेक्ट्स चूँकि उन्होंने पढ़े होते हैं तो उनके लिए हर एरिया ओपन होता है। आई मीन फॉर एग्जाम्पल आपने कोई जनरल मैनेजरियल जॉब करनी है, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक स्किल, तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए वो सब एरियाज भी ओपन है, मैनेजमेंट, बिजनेस के अंदर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर। मेरे बॉस जो जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी वो कॉर्पोरेट जॉब्स भी कर रहे हैं। वो आपके पाकिस्तान में डेवलपमेंट सेक्टर बहुत बड़ा है जहाँ पे आपका एनजीओ सेक्टर है, आईएनजीओज हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है, कंसल्टिंग है, उसमें स्टूडेंट्स बहुत सारे जाते हैं और हमारे स्टूडेंट्स भी वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाकर काम कर रहे हैं।
1: वेल दैट इज़ ग्रेट टू हियर सर कि एक जो ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज का जो एक स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो अवेल कर सकता है। दैट इज़ वेरी नाइस टू हियर सर। अच्छा सर, मूविंग ऑन, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा क्योंकि ये एक एडमिशन कैंपेन के हवाले से शो किया जा रहा है, तो मैं आपसे एडमिशन के क्राइटेरिया के बारे में पूछना चाहूँगा कि जिस जो मेरे लिसनर ने अभी अभी इंटरमीडिएट पास किया है, सर क्या क्राइटेरिया है उसका, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वो ह्यूमैनिटीज़ ऑफ सोशल ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज की फैकल्टी के अंदर एडमिशन ले सकता है, मतलब उसको कितने इंटरमीडिएट के मार्क्स चाहिए और क्या स्कॉलरशिप वो अवेल कर सकता है?
2: हाँ, इसमें हम जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसमें कोई ऐसी कैद नहीं है कि उन्होंने पहले सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हों। अगर आपने साइंस पढ़ी है या आर्ट्स पढ़े हैं, सब स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और जहाँ तक मार्क्स की बात है, आई थिंक यू नीड टू स्कोर 50% मार्क्स, जो आपने अगर मैट्रिक के एफएससी में लिए हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है। जी बिल्कुल।
1: अच्छा सर, नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आई गेस द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, जो कि ये है कि लाहौर में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं, UMT है, UOL है, बहुत ज़्यादा फैकल्टीज जो हैं वो ये वाले सब्जेक्ट्स ऑफर करवा रही हैं. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो UCP है, UCP ऐसा क्या काम कर रहा है जो कि हमें जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे सेट अपार्ट करता है? हम क्या ऐसा यूनिक दे रहे हैं, क्या हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है?
2: आई थिंक जो चीज़ यूनिक है हमारे प्रोग्राम के बारे में और हमारे कैंपस के बारे में वो ये है कि जो एक्सपोजर स्टूडेंट्स को यहाँ मिलता है वो आई थिंक इनके कंपेटिटर्स में नहीं मिल सकता. फॉर एग्जांपल हमने पिछले एक साल में जितने ज़्यादा इवेंट्स करवाए हैं और जितने अहम डिग्निटरीज हमारे इवेंट्स में आते हैं, फॉरन अभी हमने वी हैड अ वेरी लार्ज कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी, तो वी हैड स्कॉलर्स फ्राम सिंगापुर, स्कॉलर्स फ्राम इंडिया, स्कॉलर्स फ्राम पोर्चुगल, स्कॉलर्स फ्राम इंग्लैंड, फ्राम अमेरिका स्कॉलर्स आए थे. They spent 3 days here. They interacted with the students. Students were part of the whole, engagement. बल्कि students ही हमारे events करवाते हैं. हमारी जो faculty है उसका emphasis आ रहा है इस बात पर कि students को आगे लेके आया जाए. तो उसके अलावा हमारे पास अपने पाकिस्तान के अपने important politicians, speaker of the Punjab Assembly और इस तरह के लोग भी उस conference में आए थे. Similarly, last time हमने पिछले साल we had a conference on climate change. और उसके अंदर भी इसी तरह global scholars वगैरह आए थे और important senators आए थे और ministers आए थे. और स्टूडेंट्स उनसे खुद मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं. इट्स अ वेरी ओपन फ्रैंक एनवायरनमेंट. तो जो एक्सपोजर स्टूडेंट्स को यहाँ मिलता है और जो हमारी अपनी स्ट्रेंथ ऑफ द फैकल्टी इटसेल्फ, हमारे पास जो फैकल्टी मेंबर्स हैं हाईली क्वालिफाइड, मोस्ट ऑफ देम आर फॉरन एजुकेटेड, और उसकी वजह से स्टूडेंट्स को वो हेल्प कर लेते हैं अगर स्टूडेंट्स भी बाहर पढ़ना जाना चाहें या मार्केट में, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिशनर्स भी हैं हमारी फैकल्टी में. तो इफ़ दे डोंट वांट टू स्टडी फर्दर बट दे वांट टू गो इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड इमीडिएटली, उसके लिए भी हमारे फैकल्टी के बड़े अच्छे नेटवर्क्स बने हुए हैं और स्टूडेंट्स आसानी से फिर मार्केट प्लेस में जाके अपनी जॉब वगैरह ले सकते हैं.
1: वेल दैट इज़ वेरी गुड टू हियर सर. अच्छा सर, आपने शुरू में मैंशन किया था कि जो फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज है वो एक छोटी फैकल्टी है. तो सर मुझे ये बताइएगा कि फ्यूचर गोल्स क्या हैं इस फैकल्टी को लेकर, क्या आप इसको ब्रॉड करना चाहेंगे? या क्या फ्यूचर गोल्स आपने सेट किए हैं कि हमने इस डिपार्टमेंट को, जो ये फैकल्टी है, उसको यहाँ तक लेके जाना है?
2: हाँ बिल्कुल, वी आर वेरी एम्बिशियस एंड वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह. हमने क्या किया है कि पिछले बहुत कम वक्त में हमने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से हम मास्टर्स पे भी आ गए और हमने अभी रिसेंटली PhD भी लॉन्च कर दिया IR में, और पॉलिटिकल साइंस का BS भी इतना पुराना नहीं है और हमारा प्लान है कि उसमें भी हम मास्टर स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह फिर PhD की तरफ भी जाएंगे. तो हमारा प्रोग्राम और हमारी फैकल्टी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है. आई थिंक वी विल डू वेरी वेल एंड वी आर डूइंग ऑलरेडी वेरी वेल. तो स्टूडेंट्स हैव ग्रेट प्रॉस्पेक्ट्स व्हेन दे कम टू UCP.
1: सर मुझे एक और बात बताइएगा कि हमने देखा है कि स्टूडेंट्स हमेशा ना टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने से डरता है कि टीचर को कोई बात बुरी ना लग जाए. तो सर मुझे इस हवाले से बताइएगा कि UCP का या जो आपकी जो फैकल्टी है उसका कैंपस कल्चर किस तरह का है? स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्रीली टीचर से आके बात कर सकते हैं उनके ऑफिस उनके ऑफिस आवर्स के दरमियान या उनके पास उनके ऑफिस में जाके बात कर सकते हैं, इस तरह का ये पॉसिबल है?
2: जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स के साथ हमारा तो बहुत फ्रैंक रैपोर्ट होता है. हम स्टूडेंट्स को, we have office hours pretty much every day. Students can come meet us in our office hours. आगे हमसे गपशप लगा सकते हैं, अपने मसाइल डिस्कस कर लेते हैं. उसके अलावा वी हैव अवर ओन मेंटरशिप प्रोग्राम. तो एवरी स्टूडेंट हैज़ ए फैकल्टी मेंटर एडवाइजर जो कि थ्रू आउट द 4 years विल स्टे अटैच्ड विद दैट फैकल्टी मेंबर, और जो भी उसको पर्सनल मसाइल आए या एकेडमिक मसाइल आए दे कैन ईजिली गो एंड टॉक टू स्टूडेंट्स. मेरे पास स्टूडेंट्स आते रहते हैं, हम गपशप भी लगाते हैं, मसाइल पर बात भी करते हैं, मैं उनको बुक रिकमेंडेशन भी देता हूँ, एंड कभी कभी वो मेरे पास दिखा एंड सेड दे हैव टी विद मी एंड वी हैव अ लॉन्ग चिट चैट सेशन. तो बिल्कुल फैकल्टी इज ऑलवेज अवेलेबल एंड हैप्पी टू इंटरेक्ट विद.
1: Well, that is great to hear, sir. अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि जो मेरे लिसनर्स सुन रहे हैं जो कि अभी फ्रेशली जिन्होंने इंटरमीडिएट पास किया है और वो चूज करना चाह रहे हैं कि कौन सी फैकल्टी के अंदर एडमिशन लिया जाए, सर क्या जो IR है उसको क्यों चूज किया जाए? ये वाली फैकल्टी जो है फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज उसको क्यों चूज किया जाए?
2: हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है, और जाहिर है स्टूडेंट्स हम अक्सर ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन होती है जब वो स्कूल से या कॉलेज से निकलते हैं मैट्रिक FSC करके कि आगे हम क्या करें. बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता होता है उन्हें जिंदगी में क्या करना है. अक्सर स्टूडेंट्स बेचारे यूनिवर्सिटी में आके भी वो अभी सोच रहे होते हैं कि हमें पता नहीं है व्हाट शुड वी बी स्टडीइंग और शुड वी रियली बी स्टडीइंग व्हाट वी आर स्टडीइंग. तो कैसे पता चले कि क्या पढ़ना चाहिए? आई थिंक इसमें हमें एक तो इंसान की ज़रूरियात को देखना ज़रूरी है, दूसरा मुस्तकबिल को देखना ज़रूरी है. अक्सर हम देखते हैं कि लोग, अब जाहिर है क्योंकि मेरा ताल्लुक ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज के साथ है तो मैं आई विल गिव यू दैट परस्पेक्टिव. अक्सर हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई फ्यूचर तो टेक्नोलॉजी का है फ्यूचर कंप्यूटर साइंस का है, आईटी का है, एआई का है, तो सब लोगों को ये पढ़ना चाहिए। और ऐसे लगता है कि जैसे हमारे सब्जेक्ट्स फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, यू नो, सोशियोलॉजी, ये तो उसका ऑपोजिट सब्जेक्ट्स हैं, तो ये क्यों पढ़ने चाहिए। एक्चुअली अगर मैं आपके लिसनर्स की तवज्जो इस तरफ करवा सकूं तो उनको ये पता चले कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया में एक एआई रेवोल्यूशन आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन आ रहा है, और अब हमारे स्टूडेंट्स भी, बच्चे अब तो एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटे बच्चे इवन फ़ोन पे वो मेटा का एआई इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लोग चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, और एआई सीम्स टू बी टेकिंग ओवर। और जिस वक्त दुनिया में लोग अहले नज़र हैं जो दुनिया को बड़े गौर से देख रहे हैं, उनका नब्ज, उनकी नब्ज जो है वो माशरे की उस पल्स पे है, तो वो ये बता रहे हैं और ये हमें नज़र भी आ रहा है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रेवोल्यूशन है, इसने आहिस्ता आहिस्ता टेक्निकल एरियाज़ को नापैद कर देना है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, ग्लोबली भी देख रहे हैं कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, उनके काम आर बीइंग एनक्रोच्ड अपॉन बाय एआई। तो अभी मैं एक मीटिंग में था रिसेंटली, उसमें पता ही चला कि पाकिस्तान में जो आपकी आईटी की जॉब्स हैं, एक्चुअली दे आर इन डिक्लाइन। पिछले साल पाकिस्तान में 80,000 जॉब्स थी कंप्यूटर साइंस की, इस साल सिर्फ 30,000 जॉब्स हैं। और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ दे आर डिशिंग आउट सो मैनी आईटी ग्रेजुएट्स। और उसकी वजह क्या है, एक तो यह है कि आईटी चूंकि सब लोग पढ़ना चाहते थे तो सब लोग उसमें चले गए, ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा हो गए, ज़ाहिर है मार्केट की एक लिमिटेशन होती है ना, तो उतने अब एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी मार्केट में नहीं है, एक तो ये वजह। दूसरी वजह यह है कि एक्चुअली एआई इतनी स्मार्ट है कि वो खुद ही कोड लिख लेती है, खुद ही वेबसाइट बना लेती है, खुद सॉफ्टवेयर बना लेती है, तो कंप्यूटर साइंस वालों ने, बेचारों ने खुद ही एक फ्रैंकेंस्टाइन मॉन्स्टर बना लिया अपने लिए, वो अपने आप को ही बेरोजगार किए जा रहे हैं। उन्होंने ऐसी चीज़ बना दी है जो उन्हीं को गैर जरूरी कर देगी और कर रही है। और दुनिया में अब ये बात हो रही है कि 2030 तक शायद एआई कंप्लीटली आपके दुनिया को बदल चुकी होगी, पर्टिकुलरली एम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड को बदल चुकी होगी, आपकी जॉब शायद किसी को जरूरत ही ना हो, इवन टेक्निकल जॉब्स लाइक डॉक्टर की जॉब्स हैं। अभी रिसेंटली आई वाज रीडिंग अबाउट अ कॉन्फ्रेंस हैपेंड इन द यूएस, मेडिकल कॉन्फ्रेंस, उसमें वो ये मेडिकल डॉक्टर्स जो रिसर्च करते हैं एआई के ऊपर, ये बता रहे थे कि हमारे अब एआई के जो एजेंट्स हैं, जो एआई बॉट्स हैं, जो हमारे पास टूल्स हैं, वो रेडियोलॉजी में जो स्कैन्स किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन ब्रेन स्कैन्स या बॉडी के स्कैन्स, जिसको देख के डॉक्टर बताता है कि आपको मसला क्या है, वो कहते हैं कि हमारे जो एआई की एनालिसिस है उन स्कैन्स की, वो उसकी एक्यूरेसी 95% है तकरीबन, और जो एक बहुत बड़ा पुराना मंजा हुआ डॉक्टर होता है उसकी एक्यूरेसी 60% होती है। यानी एआई इज बेटर देन अ रियल डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर एट जजिंग योर डिजीज। तो यानी आहिस्ता आहिस्ता ही डॉक्टर्स को भी गैर जरूरी कर देगी। तो जहाँ पे कंप्यूटर साइंटिस्ट की जॉब भी चली गई, साइंटिस्ट की जॉब भी चली गई, डॉक्टर की जॉब भी चली गई, एआई ने सब कुछ करना शुरू कर दिया। अकाउंटेंट भी आपको नहीं चाहिए, एआई आपके सारे अकाउंट्स देख सकता है, कर सकता है, ऑलरेडी कर रहा है, और इंप्रूवमेंट्स कितनी स्पीड से आ रही हैं। अभी दो हफ्ते पहले चैट जीपीटी 5 आ गया, आगे ग्रॉक 4 आ गया, तो ये चीज़ें आ रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर इन एरियाज में जाना तो खतरनाक है, तो फिर कहाँ पर जाएँ? जब दुनिया के ऊपर एआई की हुकूमत होगी और रोबोट्स आ जाएंगे, और वो आ रहे हैं ऑलरेडी, आपको पता है टेस्ला की फैक्ट्रियों में रोबोट ज़्यादा हैं, इंसान कम है, तो फिर उस दुनिया में इंसान को ज़रूरत महसूस फिर साइंस की नहीं होगी, आईटी की नहीं होगी, बल्कि ज़रूरत उसको महसूस होगी इंसानियत की। ही विल फील लाइक मुझे ह्यूमन कनेक्शन चाहिए। हर जगह रोबोट्स हैं, हर जगह टेक्नोलॉजी है, हर जगह कंप्यूटर एजेंट्स हैं, तो इंसान कहाँ पे है? वहाँ पे उसका दिल करेगा कि मैं कोई पोइट्री पढ़ूँ, कोई हिस्ट्री पढ़ूँ, कोई फलसफा पढ़ूँ, कोई इंसानी ताल्लुक बनाऊँ। एरिस्टोटल ने कहा था ना कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो उसकी ह्यूमन नीड्स हैं। तो वहाँ पे फिर दिस इज़ वेयर यू स्टडी ह्यूमैनिटीज़, एंड ऑब्वियसली ह्यूमैनिटीज़ का एक जो ग्लोबल स्केल है वो पॉलिटिक्स और आईआर है। तो वहाँ पे फिर इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ वेयर रियली आई थिंक फ्यूचर में इवन फ्रॉम अ करियर परस्पेक्टिव यू विल बी बेटर ऑफ स्टडिंग ह्यूमैनिटीज़, पॉलिटिक्स, आईआर देन स्टडिंग इवन कंप्यूटर साइंस। दिस इज़ माय व्यू।
1: थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर इनसाइट, एंड आई गेस ये सिचुएशन काफ़ी अलार्मिंग है, जिस तरह से आपने बताया कि एआई वुड बी टेकिंग ओवर द ऑल द वर्ल्ड।
2: इट इज़ ऑलरेडी टेकिंग ओवर, आप देख सकते हैं।
1: इट इज़ ट्रू सर, इट इज़ ट्रू। दिस इज़ योर होस्ट साइनिंग ऑफ, कीप लिसनिंग टू FM 92.6। आप सुन रहे थे फैकल्टी आवर, और ये एपिसोड इख्तिताम की तरफ पहुँचती है। दिस इज़ योर होस्ट साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: एक नई सोच,
3: नई सोच,
4: एक नई पहचान,
5: पहचान,
2: एक नई लगन,
5: नई लगन।
4: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
4: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
4: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
4: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
4: यूसीपी की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
4: सुनते रहिए।

0: Your voice, your choice. This is University of Central Punjab FM 92.6. UCP ki duniya. The best campus radio in the country.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया और आप लोगों ने ज्वाइन किया है फातिमा अहमद को एक्सक्लूसिव लेजेंड्स में और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नाजिया हसन को और हम लोग बेसिकली एक हफ्ता हम किसी एक्टर को डिस्कस करते हैं या किसी एक्ट्रेस को डिस्कस करते हैं और अगले हफ्ते हम लोग किसी म्यूजिकल आर्टिस्ट को डिस्कस करते हैं. तो लास्ट वीक हमने एक आर्टिस्ट एंड एक्टर को डिस्कस किया था, तो इसलिए इस दफ़ा हम लोग एक बैंड को डिस्कस कर रहे हैं. बैंड नहीं, वो कह सकते हैं नाजिया एंड जुहेब का. और हम लोग ने बेसिकली डिस्कस किया कि हाउ दे बिकेम पॉपुलर और हाउ दे हैव गेंड देयर सक्सेस. और इनकी हम ऑब्वियसली इनकी सक्सेस की बात कर रहे थे, तो हम उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में एक MTV फीचर होता है, उसमें उन्होंने अपनी म्यूज़िक वीडियो जो थी उसको भी मतलब कि वहाँ पर भी उन्होंने ऑनर किया था, उसको वहाँ पर भी भेजा था. और नाजिया एंड जुहेब ने फिर अपनी फोर्थ हिट एल्बम हॉट लाइन के नाम से 1987 में उसको रिलीज़ किया और दिस फीचर द डूओज यंगर सिस्टर ज़ारा हसन एज वेल. तो आई थिंक दिस इज़ वेरी नॉर्मल एंड वेरी ईजी टू से, लेकिन वही बात है कि जब आपके सक्सेस इज कम्स टू यू नो मैटर वट, और आप किस तरह से उसको अचीव या किस तरह से उसको अपने किस तरह से उसका ख्याल रखते हो, आई एम नॉट रॉन्ग. और इनकी बात करें तो वही बात है कि फैमिली में ही खूबसूरत आवाज़ और फैमिली में ही एक तना लगन टू अचीव समथिंग वो मौजूद थी. और वही बात है कि उनकी जो छोटी बहन she also worked with them and she has a melodious voice, इसीलिए obviously she became part of the album और album भी hit album रही थी. और उसके अलावा फिर इन्होंने आगे release किया अपनी last studio album जिसका नाम था Camera in 1992 और this was मतलब कि जुहेब ने ही इसको लिखा और produce किया. तो यू नो व्हेन यू डू वर्क तो आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं और फिर आप वहाँ से अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल सकता है कि आप कितने अच्छे तरीके से या किस तरीके से आप हर चीज़ को यूटिलाइज़ करके अपने डिफरेंट टैलेंट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं. और सुहेब डिड दैट इन द राइट वे एंड आई रियली बिलीव इन द फैक्ट कि आपको जब कोई प्लेटफॉर्म मिलता है ना तो उसको 100% उसका यूज़ करना चाहिए. ये नहीं कि अगर आपको उस प्लेटफॉर्म का 1/4 पार्ट मिला है तो आप बस 1/4 पार्ट पर ही रह सकते हो. ट्राई टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, आप इधर उधर जाओ एंड यू कैन एक्सप्लोर कि आप ये भी कर सकते हो एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. और उसके अलावा फिर उसके बाद उन्होंने अपनी 5th स्टूडियो एल्बम रिलीज़ की और ये उन्होंने अनाउंस किया कि इनकी आखिरी एल्बम होगी. ये एल्बम जो थी इस उस लेवल का सक्सेस इसने अचीव नहीं किया था क्योंकि नाजिया जो थी शी एकदम से उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी एंड यू नो एक वो डाउनफॉल बेसिकली वहाँ से उनका शुरू हो गया था. और वो CD को उस तरह से प्रमोट नहीं कर सके थे और क्योंकि लोगों को बेसिकली लगता है कि यू नो आपने काम कर लिया और आपने उसको बाहर मार्केट में भेज दिया तो मतलब कि अब और कुछ नहीं. लेकिन प्रमोशन इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोग्राम यू डू और उसको जितना प्रमोट करोगे उतना ही उसको सक्सेस मिलेगा. और नाजिया जो है शी ऑब्वियसली तबीयत की वजह से वो उसको उतना प्रमोट नहीं कर सके थे अपने CD को अपने एल्बम को. तो उस एल्बम के रिलीज़ होने के बाद नाजिया ने गाना छोड़ दिया था, अपना सिंगिंग करियर छोड़ दिया था और उन्होंने अपनी हेल्थ पे और अपनी पर्सनल लाइफ पे उन्होंने फोकस करने का सोचा और बल्कि किया भी वही. और जुहेब जो थे उन्होंने अपना ऑब्वियसली अपना करियर परसू किया क्योंकि यू नो लाइफ में बहुत से ऐसे स्टेप्स आते हैं जहाँ पर यू नो लाइफ इज़ टेस्टिंग यू कि अच्छा आप भी रुक जाएंगे या फिर यू विल कीप ऑन वर्किंग एंड जुहेब डिड दैट. जुहेब सेड के यू नो लाइफ विल ब्रिंग चैलेंजेस लेकिन यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग बेसिकली. तो इसलिए जुहेब ने ही कंटिन्यूड टू वर्क एज एन एक्टर एंड एज अ सोलो आर्टिस्ट. और उसके बाद उन्होंने अपनी सोलो डेब्यू एल्बम जो थी किस्मत के नाम से 2006 में रिलीज़ की और دس گروپ اینڈیڈ ان دا لائک ویری ارلی 90s کیونکہ نازیہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اینڈ لیٹر نازیہ ڈائڈ آن 13th August 2000 اور لنگ کینسر کی وجہ سے اور ایٹ دی ایج آف 35 ان لنڈن اینڈ دیٹ از دیٹ آئی بلیو کہ بہت بہت سیڈ نیوز تھی اور ایون دو پیپل نیو کہ ان کی طبیعت خراب ہے اینڈ پیپل نیو کہ یو نو دیر از نو کمنگ بیک لیکن پھر بھی جب یہ خبر پہنچی تو سب نے ہی بیسکلی بہت سب اداس تھے اینڈ ایوری ون واز شاکڈ آن دا فیکٹ کہ یو نو دس ہیز ریئلی ہیپنڈ اور زہیب جو ہے انہوں نے بھی اپنے سنگنگ کو چھوڑ دیا بفور میکنگ اے اسپیکٹیکولر کم بیک ان 2015 بائی ہز ہٹ سانگ جانا چہرہ اینڈ دھیرے دھیرے جو کہ ڈفرینٹ جو اسٹوڈیوز ہیں پاکستان کے اس میں اس کو ریلیز کیا گیا تھا اور وہی بات ہے کہ جب آپ کچھ دیر کا بریک لیتے ہو تو یو گیٹ مور ٹائم ٹو ورک اینڈ فوکس آن سم تھنگ اور نہ صرف یہ بلکہ جب اتنا بڑا لاس ہوتا ہے آپ کی لائف میں آپ کی فیملی میں آپ کے بالکل گھر میں تو یا پھر اس کے ساتھ جس کے ساتھ آپ نے اپنا کیریئر بیسکلی لکھا ہو اور پھر اس کے ساتھ ایسا ہو تو پھر آئی تھنک اٹ از ناٹ اونلی ویری سیڈ بٹ اٹ از وہی بات ہے کہ آپ شوق میں چلے جاتے ہیں آپ کو ٹائم لگتا ہے ٹو برنگ یور سیلف بیک اور نازیہ اینڈ زہیب کا بیسکلی یہی سین تھا کہ دے ور باؤنڈ اینڈ دے ور ٹوگیدر اور انہوں نے اپنے کیریئر ہی کیسے اسٹارٹ کیا تھا تو آپ کو ہوتا ہے نا کہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا کہ یو نو یو اسٹارٹیڈ ورکنگ ٹوگیدر اور اکٹھے سارا کام کیا تھا اینڈ یو نو سڈنلی وین دا باؤنڈ بریکس تو پھر آپ کو تھوڑا سا یو نو تھوڑا سا ایشو ہو جاتا ہے تو اس لیے آئی تھنک کہ آپ کو تھوڑا سا مطلب کہ بہت ضرورت ہوتی ہے بیسکلی آئی بلیو کہ آپ ایک تھوڑا سا بریک لو چھوٹا سا اور اپنے آپ کو ریلیکس کرو تو اسی طرح ہم لوگوں نے بہت باتیں کی ہیں تو اس لیے ہم بھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس میوزیکل کیونکہ ہمیں فائدہ ہے کہ ہم میوزیکل بریکس میں جاتے ہیں تو اس میوزیکل بریک کے بعد ہم لوگ واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ.

वेरी क्लियरली जिनको जिनको समझ आना था, आई होप कि उनको समझ आ गया, और जिनको नहीं समझ आया उनको भी आई विल मेक श्योर कि मैं उनको समझा दूँ, और यू नो डू मीट मी और डू टेल मी, आई विल क्लियरली इन्फॉर्म यू व्हाट आई वांट. और इस तरह करते हैं कि अब हम लोग चलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, और फिर उसके बाद हम वापस आएंगे. फिर उसके बाद देखते हैं कि नाज़िया हसन के हम लोगों ने ऑब्वियसली उनके अवार्ड्स एंड उनके और भी डिफरेंट फन फैक्ट्स हैं जो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, तो वी विल डिस्कस दैट. सो we'll be right back.

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप लोग सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया और आप लोगों ने ज्वाइन किया फातिमा अहमद को एक्सक्लूसिव लेजेंड्स में. खैर, मैं आप लोगों को एक बहुत मज़े की न्यूज़ ये देना चाह रही हूँ. एक मेरे लिए भी बहुत फ़न फैक्ट था और आप लोगों के लिए भी आई एम श्योर ये फ़न फैक्ट होगा कि नाज़िया एंड जुहैब जो हैं, इनके ऊपर एक मूवी बनने वाली है. एक इंडिया में बेसिकली मूवी बनेगी. इनको एक लाइक द पावर सिबलिंग्स इनको कहा जाता है, तो इनको उसमें एक ऑनर के तौर पे उनके ऊपर एक मूवी बनेगी और इनको पायनियर ऑफ पॉप म्यूज़िक जो है पाकिस्तान में कहा जाता है. तो इसलिए बॉलीवुड फिल्म में उनकी हाईलाइट्स दिखाएंगे. ऑब्वियसली वो जो है ना बायोग्राफी टाइप एक मूवी होगी, तो वो बनेगी. तो आई थिंक दैट इज़ वेरी अमेजिंग एंड दैट इज़ वेरी सक्सेसफुल. और फहद कुरैशी

जो है उन्होंने एफएम 92.6 को शर्फ बख्शा है अपनी प्रेजेंस से. तो अस्सलाम वालेकुम फहद, और यू नो शाउट आउट मेरे शो पे आपको मिल रहा है, यू नो यू आर सो लकी. और उसके अलावा हम नाज़िया हसन की बात कर रहे थे, तो आई थिंक ये बहुत मज़े की बात है और बहुत एप्रिसिएशन की बात है, और एक मेरे खिला मेरे मतलब के ख्याल से कि लास्ट 3 decades में जितना भी इन पे काम हुआ है और जितने भी हिट्स निकले हैं, लेकिन उसके अलावा इस इनके ऊपर एक इनके करियर के ऊपर एक मूवी बनना और कुछ घंटे में उसको कंपाइल करके और उसको एक जिसका एक होता है ना एक सक्सेस स्टोरी बेसिकली उनके बयान करना, बेसिकली वो ऐसी ही स्टोरी उनका बनाने का मकसद है. एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये कैसा होगा शो और ये कैसा मतलब कि कैसा काम होगा इस पर. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट. खैर अब इस तरह करते हैं, क्योंकि वही बात है कि मैं हमेशा बार बार तब से यही बोल रही हूँ कि टाइम का पता नहीं चलता और ऐसे टाइम दौड़ जाता है और शो शुरू होता है और फिर ऐसे ही करते करते शो जो है वो ख़त्म हो जाता है और इतनी सारी बातें होती हैं कहने को, वो सारी बातें रह जाती हैं. लेकिन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एवरी वन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच, एंड अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड.

0: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
0: एक नई लगन।
1: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
1: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
1: यूसीपी की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।
2: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

वतन तुझे रोशनी की दुआएं, तेरे को हो दमन गुलनार और हवाएं गुलबहार। जब तक ये जहां है तू शाद सरसब्ज और खुशहाल रहे। अल्लाह तेरा निगहबान और तेरे दुश्मन।

0: तुझे।
1: ऐ वतन, सागर की हर लहर की है ये दुआ कि तेरे रेगजारों में सुर के रंग फूटे, जंगल बयाबानों में मोहब्बत के नगमे गूंजे, भिटाई और सचल के ये

मेरी सारी वफाएं तेरे लिए और तू मेरी जीनत, तुझी से मेरा सारा हुस्न, तेरी मोहब्बत मेरा बेशबहा सरमाया और मेरी जानो माल सब तुझ पर कुर्बान।

रहे हरियालियां और फूलों से लदी रहे डालियां, ये प्रेम धरती, ये वलियों का देश, यहाँ रब ने घर घर में उतारी हैं खुशहालियां।

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Radio.

0: हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: मट्टी का है बाबा तू, तेरी किस्मत एक सफर।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: अशरफ फ़तेह अली ख़ान साहब जो हैं वो एक अहद है, एक दौर है पूरा।
1: 20वीं सदी के आखिरी हिस्से को अपनी आवाज़ के सहर में जकड़ने वाले उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनी। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ का जादू किसी की रूह पर असरअंदाज होने के लिए किसी मखसूस जबान का मोहताज नहीं। साज और आवाज़ से नुसरत की रूह और दिल की हम आहंगी के बायस सुनने वाले उनकी आवाज़ के सहर में खो जाया करते थे।

0: तो ये अल्लाह की अता होती है और गिफ्ट, गॉड गिफ्ट होता है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो अच्छी लग रही है और लोगों से प्यार कर रहे हैं।
1: उस्ताद नुसरत फतेह अली खान कवाली के मैदान में कदम रखते ही जान चुके थे कि कवाली को जिंदा रखना है तो कुछ मुनफरिद करना होगा। उन्होंने सरगम और लयकारी का इंतहाई खूबसूरत इस्तेमाल करके कवाली को एक ऐसी शक्ल दे दी कि सुनने वाला उसके सहर में जकड़ा चला जाता। कवाली जुग्राफियाई, लसानी और मजहबी हदूद की कैद से आज़ाद हो गई।
2: मुझे बचपन से यही शौक था कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा नया अंदाज सीखूं जिससे मेरी एक अलग पहचान हो।

जब भारत के बड़े बड़े मौसीकारों ने खान साहब को कॉपी करना शुरू किया तो बिलाआखिर वो खुद मैदान में उतर आए। माइकल ब्रूक के साथ कामयाब तजर्बात के बाद रेमिक्स म्यूजिक स्टार बाली सागू के साथ भी फ्यूजन किया, जिसने बिजनेस के रिकॉर्ड कायम किए।

अवाल की हैसियत से 125 ऑडियो एल्बम नुसरत फतेह अली खान का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ने वाला शायद दूर दूर तक कोई नहीं।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आप सुन रहे हैं शो फैकल्टी आवर। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में एज अ सीनियर लेक्चरर अपने जो है खिदमात पेश कर रहे हैं। उनका नाम है असद ताशफीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर।
3: वालेकुम अस्सलाम।
2: सर मैंने तो थोड़ा सा आपका रफ सा इंट्रोडक्शन दे दिया, मुझे ये बताइएगा सर कि एज अ सीनियर लेक्चरर आपने बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें फेस की होंगी, बहुत ज़्यादा हर्डल्स पास की होंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ों को पार करके आप एज अ सीनियर लेक्चरर यहाँ पे पहुँचे होंगे। सर अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दीजिएगा कि किस तरह से आप इस मकाम पे पहुँचे हैं।
3: राइट, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो बेसिकली टीचिंग का मुझे हमेशा से शौक था और कुछ मतलब रीडिंग राइटिंग एकेडमिक शौक हमेशा से ऑलवेज हैड अ स्कॉलरली बेंट टू माई सेल्फ। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो आई डिड माई अंडर ग्रेजुएट फ्रॉम लम्स, वहाँ से मैंने पॉलिटिकल साइंस में मेजर किया। बाकी हमारे और भी दूसरे ह्यूमैनिटीज़ और जिस तरह हमारी फैकल्टी है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स होते थे उनका मुझे शौक था। तो वो मैं अपने प्रोफेसर से इंस्पायर हुआ काफ़ी, बड़े ज़बरदस्त वहाँ पे लोग थे और उन्होंने जो 4 साल उनके साथ गुजारे, आई बिकेम क्वाइट इंस्पायर्ड कि मैं भी इस लाइन में जाऊँ। तो इसलिए फिर मैंने मज़ीद आगे भी हायर स्टडीज़ में सोशल साइंसेज को ही चूज़ किया। तो फिर मैं पढ़ने के लिए बाहर UK चला गया, वहाँ पे वॉरिक यूनिवर्सिटी है UK में, वहाँ से आई डिड अ मास्टर्स इन पोलिटिकल साइंस। तो फिर आई वॉन्टेड टू परसू द सेम फील्ड, तो फिर वापस जब मैं आया तो आई जॉइन UCP एंड आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस। और बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें मुझे। तो जो भी लोग जिनका कुछ इंटेलेक्चुअल बेंट है या जो समझना चाहते हैं कि दुनिया किस तरह चलती है और यू नो हिस्ट्री क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, फॉरेन पॉलिसी क्या है, दुनिया में आज जो कुछ हो रहा है जिससे हम बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं, हर रोज़ हम इतनी खबरें देखते हैं और कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, तो अक्सर हमें समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है। तो बेसिकली अगर आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जैसे IR पॉलिटिकल साइंस, इट गिव्स यू अ फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड कि भाई ये सब कुछ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको किस तरह समझ सकते हैं। वरना लगता है कि बस रैंडम इवेंट्स दुनिया में हो रहे हैं, रशिया में कुछ हो रहा है, यूक्रेन में कुछ हो रहा है, पैलेस्टाइन में कुछ हो रहा है, अफ्रीका में कुछ हो रहा है, इंडिया में कुछ हो रहा है, जैसे एक मैस है। लेकिन जब आप चीज़ों को सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं यू अंडरस्टैंड कि मैस नहीं है, देर इज एक्चुअली अ लॉजिक टू ऑल दीज थिंग्स। सो आई वॉन्ट टू नो दिस लॉजिक, तो इसलिए फिर मैंने इसको परसू किया और फिर अब मैं खुद उस पोजिशन में हूँ जहाँ पे मैं प्रोफेसर को देख के इंस्पायर हुआ करता था।
2: सर मेरे लिसनर्स को ये बताइएगा जिनको कहते हैं ना ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेग स्टेटमेंट, तो जो मेरे लिसनर्स बिल्कुल स्क्रैच से जानना चाहें कि वट बेसिकली ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज आर, तो वो आप थोड़ा सा बता सकते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वट एक्चुअली इट इज, मतलब कि इस चीज़ में क्या क्या आ जाता है।
3: राइट, बिल्कुल। तो बेसिकली हम जब एकेडमिक वर्ल्ड को देखते हैं ना तो हमें दो किस्म के डिसिप्लिन नजर आते हैं, एक को हम कहते हैं हार्ड साइंसेज और एक है लेट्स से सॉफ्ट साइंसेज। हार्ड साइंसेज को नेचुरल साइंसेज भी कहते हैं, ये वो हैं जो मजामीन अक्सर हम स्कूल वगैरह में पढ़ के आए हैं जिस तरह बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, तो इनको हार्ड साइंसेज कहते हैं बिकॉज ये नेचर को स्टडी करते हैं। हार्ड क्यों? क्योंकि मटेरियल चीज़ों को लाइक फिजिकल थिंग्स उनको स्टडी करते हैं ना, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं फोर्स के बारे में, मैटर के बारे में, एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में, सिमिलरली बायोलॉजी में नेचुरल लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में केमिकल्स और रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन सोशल साइंसेज वो हैं जो द सब्जेक्ट इज नॉट मैटर बट ह्यूमन बीइंग्स, कि इंसान क्या है और वो किस तरह बिहेव करता है। तो सोशल साइंसेज में आपके पास काफ़ी सारे डिसिप्लिन आ जाते हैं, जिस तरह पॉलिटिकल साइंस है हमारा, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, बेसिकली इंसान और उसके माशरे को जो स्टडी करने की एक मुहिम है वो दैट फॉल्स इन द सोशल साइंसेज। फिर आपके पास ये ह्यूमैनिटीज़ हैं, दैट इज़ टू स्टडी द प्योर ह्यूमन सब्जेक्ट हिमसेल्फ, उसकी फीलिंग, उसकी इमोशंस और उसकी not having necessarily a scientific bent, लेकिन studying the realm of the human itself. इसमें क्या आ जाता है, इसमें आपके arts आ जाते हैं, languages आ जाती हैं, history आ जाती है, philosophy आ जाती है, ठीक है. Generally इनको liberal arts भी कहते हैं. तो समझा ये जाता है कि ये तालीम इंसान के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इंसान का दिमाग इससे खुलता है कि इंसान असल में है क्या. क्योंकि जब आप मैटर को स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, तो आप अपने बाहर की चीज़ स्टडी कर रहे हैं. ह्यूमैनिटीज में आप अपने आप को स्टडी कर रहे हैं कि इंसान क्या है, और उसको देखने के लिए देन यू हैव टू सी के इस पे बड़े बड़े जो आपके राइटर्स पोइट्स फिलोसफर्स गुजरे उन्होंने उसको किस तरह देखा है. सो यू वुड रीड शेक्सपियर, यू वुड रीड गालिब इकबाल, यू वुड रीड स्टडी लैंग्वेजेस देमसेल्फ, लैंग्वेजेस कहाँ से आई हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है, हमें पोइट्री सुन के इतना मज़ा क्यों आता है, आम जबान को उतना मज़ा क्यों नहीं आता, ठीक है. तो दिस इज़ द ह्यूमैनिटीज देमसेल्फ. फिलोसफी एक बहुत बड़ा एरिया है. फिलोसफी बेसिकली क्या है, फिलोसफी ये है कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग इटसेल्फ, कि किसी चीज़ के बारे में सही सोचने का तरीका क्या है, राइट. आई मीन हम तो ये कहते हैं ना कि भाई साइंस में आप ये पढ़ रहे हैं कि ग्रेविटी क्या होती है, लेकिन फिलॉसफी ये कहती है क्या ये सवाल भी दुरुस्त है कि नहीं, कि ग्रेविटी को पढ़ने का सही तरीका क्या है, इंसान को पढ़ने का सही तरीका क्या है. असल में जहाँ पे बुनियादी सवाल शुरू होता है, फलसफा आपको वहाँ लेके जाता है, ठीक है. तो इसलिए ये सब्जेक्ट्स पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज ये आपको एक ओरिजिनल पर्सपेक्टिव देते हैं. बाकी सब्जेक्ट्स तो आपको डिटेल्स देते हैं ना, ये आपको दिस गिव्स यू द ग्राउंडिंग ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड. सो इसलिए हम ये FHSS जो है ना, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटी सोशल साइंस, बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन है ऑफ सोशल साइंसेज एज वेल एज द ह्यूमन सब्जेक्ट्स.
4: वेरी इंटरेस्टिंग सर. सर ऐसी ये कि जो ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज हैं, उन्होंने हमें बहुत बड़े नाम दिए हैं, जैसे कि एरिस्टोटल हैं और चर्चिल हैं, ठीक है. वेरी इंटरेस्टिंग सर. अच्छा मूविंग ऑन सर, मुझे ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के अंदर जो हमारी फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज है, मेरे लिसनर्स ये जानना चाहेंगे जो कि इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, कि हमारे BS में और मास्टर्स में और PhD में क्या क्या प्रोग्राम्स और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ताकि वो प्रस्पेक्टिवली उसके अंदर एडमिशन ले सकें.
3: तो बेसिकली FHSS में हमारे पास दो मेन एरियाज हैं, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सेकंड इज साइकोलॉजी. क्योंकि मेरा ताल्लुक IR पॉल साइंस से है, तो मैं ज़्यादा उसकी बात करूँगा. तो बेसिकली हमारे पास अंडर ग्रेजुएट लेवल पे वी हैव टू प्रोग्राम्स, एक द बैचलर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस और दूसरा बैचलर्स इन पॉलिटिकल साइंस. जो पॉलिटिकल साइंस वाला हमारा प्रोग्राम है वो ज़रा नया है, IR वाला हमारा ज़रा पुराना प्रोग्राम है, उसके तो कुछ बैचेस ग्रेजुएट भी हो चुके हैं. तो मास्टर्स लेवल पे वी हैव एन MPhil इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वी ऑल्सो हैव अ PhD इन इंटरनेशनल रिलेशंस. तो बड़ा एक रिच हमारे पास, मतलब आप अंडर ग्रेजुएट से लेके पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी तक हमारे पास सारे प्रोग्राम्स मौजूद हैं. तो आप जिस लेवल पे भी आना चाहें, आप UCP में आके उस लेवल पे पढ़ सकते हैं.
4: वेरी इंटरेस्टिंग सर. अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि जैसे इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो किसी डिपार्टमेंट या किसी इंस्टीट्यूट के साथ या किसी फैसिलिटी के साथ वो लिंक्ड होते हैं, एफिलिएटेड होते हैं. जैसे जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो PMDC के साथ होते हैं, और जो इंजीनियर्स हैं वो इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट्स के साथ वो एफिलिएटेड होते हैं. सर मुझे ये बताइएगा कि जो ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं या जो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स हैं, सर वो किसी इस तरह के इदारे के साथ एफिलिएटेड होते हैं, जैसे मेडिकल के स्टूडेंट्स PMDC के साथ हैं?
3: हाँ, असल में चूँकि जो आप मिसालें आपने दी हैं ना मेडिकल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, चूँकि वो एक स्पेसिफिक वोकेशनल स्किल है, तो उसके लिए गवर्नमेंट जनरली रिक्वायर करती है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, खास एफिलिएशन होनी चाहिए. जनरली जो आपके नॉन साइंस सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह हमारे ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंसेज हैं, वहाँ पर ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती. तो इसमें आपकी एफिलिएशन जो है वो जनरली HEC के साथ ही है. तो हमारी सारी डिग्रीज जो है वो HEC उनको रिकोगनाइज़ करता है, एंड दे आर मतलब रिकोगनाइज नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट ग्लोबली. हमारे स्टूडेंट्स बाहर भी पढ़ने जाते हैं, तो दे आर कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल. लेकिन इस तरह की कोई एफिलिएशन नहीं होती, बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती,
4: ठीक है.
3: और ये सिर्फ UCP की बात नहीं, पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ही है. इफ़ यू आर स्टडिंग सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटीज़, यू डोंट रिक्वायर एक्चुअली एनी एफिलिएटेड या सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट.
4: ठीक है सर. अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने बात की कि फिजिक्स और जो केमिस्ट्री हैं उसके अंदर नोबेल प्राइजेज भी दिए जाते हैं, और वहाँ नोबेल प्राइजेज सर्टेन पब्लिकेशंस के ऊपर दिए जाते हैं कि आपने ये रिसर्च की, आपने कहते रिसर्च के अंदर कंट्रीब्यूट किया और जो अपना जो रिसर्च वर्क है उसको पब्लिश किया. सर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी आप इस तरह से चीज़ें पब्लिश कर सकते हैं, आप अपने आर्टिकल्स जनरेट कर सकते हैं कि आपने रिसर्च वर्क फॉरवर्ड कर सकते हैं?
3: जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स पीपल राइट बुक्स एंड आर्टिकल्स, जर्नल आर्टिकल्स, और उनको पब्लिश किया जाता है हमारे अपने स्टूडेंट्स, फैकल्टी तो करते हैं पब्लिश, हमारे स्टूडेंट्स भी पब्लिश करते हैं, और उसके पाकिस्तान में भी जर्नल्स हैं काफ़ी सारे, और ग्लोबल इंटरनेशनल रिकग्नाइज जर्नल्स भी हैं, वहाँ पे लोग लिखते हैं, रिकग्नाइज होते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स दुनिया में, आजकल लोग अक्सर जो दुनिया की न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं और एनालिसिस को देख रहे हैं, तो दे माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ पीपल लाइक नोम चॉम्स्की या जॉन मेयरशाइमर, जो अक्सर टीवी पे आके, इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया पे आके, CNN, BBC वगैरह पे, यूट्यूब पे, अक्सर बड़े चैनल्स पे आके बता रहे होते हैं इसके बारे में, एंड दे आर स्कॉलर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस. तो बिल्कुल, दे आर वेरी हाईली रिकग्नाइज पीपल इन द वर्ल्ड हु हैव स्टडीड पॉलिटिकल साइंस. आपके दुनिया में काफ़ी सारे ग्लोबल लीडर्स ऐसे हैं जो अभी मौजूद हैं और रिटायर भी हो चुके हैं, जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस है. तो येस, ऑफकोर्स नोबेल प्राइज़ की जहाँ तक बात है, तो हमारी फैकल्टी में इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जाती है, तो इकोनॉमिक्स में देर इज एवरी ईयर ए नोबेल प्राइज. यस,
4: ठीक, वेरी इंटरेस्टिंग सर. अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी ड्राई काइंड ऑफ सब्जेक्ट, कि उसके अंदर थ्योरी बहुत ज़्यादा आ जाती है, आप दो कंट्रीज़ के रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा डीपली देखते हैं. तो सर मुझे ये बताइएगा कि जैसे दूसरी फैकल्टीज़ के अंदर, जैसे फैकल्टी ऑफ मीडिया है, वहाँ पर थ्योरी के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी करवाए जाते हैं, आपको जैसे हमारा जो न्यूज़ रूम है वहाँ पे विजिट करवाया जाता है, प्रैक्टिकल वर्क भी थोड़ा सा करवाया जाता है. तो सर मुझे ये बताइएगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, जो हमारा IR का सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी क्या सिर्फ थ्योरी के साथ साथ थोड़े से एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी करवाए जाते हैं?
3: जी बिल्कुल नहीं, ये तो आई वुड नॉट एग्री विद यू कि ये बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो टेक पार्ट इन डिबेट्स, इन मेकिंग स्पीचेस, हमारे यहाँ काफ़ी इवेंट्स भी होते हैं. हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो दे गो टू डिफरेंट इंटर्नशिप्स, और वो जाके आपकी पंजाब असम्बली के साथ, डिफरेंट थिंक टैंक्स के साथ, नेशनल असम्बली के साथ काम करते हैं, और हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नेटवर्क है एक्सटर्नल लिंकेजेस का. हमारे स्टूडेंट्स का बड़ा वाइड एक्सपोजर होता है इन चीज़ों में, और देर इज़ सर्टनली प्रैक्टिकल साइड. फॉरन ऑफिस के साथ भी हमारे लिंक्स रह चुके हैं, तो ये बड़ा प्रैक्टिकल एरिया भी है, इट्स नॉट जस्ट अ थियरी. फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे अपने स्टूडेंट्स या वैसे जनरली स्टूडेंट्स ऑफ IR, दे गो एंड दे बिकम एम्बेसडर्स, डिप्लोमैट्स. अगर आप पाकिस्तान की सिविल सर्विस ज्वाइन कर लें, तो आप फॉरेन सर्विस में जाके प्रैक्टिकली अपनी IR की नॉलेज को इस्तेमाल कर सकते हैं.
4: ओके लिसनर्स, यहाँ पे एक शामिल करेंगे छोटी सी ब्रेक. आई वुड हेट टू कट यू ऑफ सर, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करनी पड़ेगी. लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया. कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे और क्वेश्चंस ऐड करेंगे. आगे हम सर से पूछेंगे कि क्या करियर डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, या हमारे जो अलमनाइज हैं वो कहाँ पे अभी मौजूद हैं.

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک لسنرز، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد تاشفین صاحب، اینڈ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز جو ایک سبجیکٹ ہے، جو کہ اوور آل جو سبجیکٹس ہیں، جیسے جو فیکلٹی آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز ہے، اس کی جو سب برانچز ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز، اور جو پولیٹیکل سائنسز کی برانچز ہیں، اس کے بارے میں ہم سر سے بات کر رہے تھے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے جو گریجویٹ کر چکے ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اب الومنائز بن چکے ہیں، سر وہ کسی ریناؤنڈ پلیس پہ کام کر رہے ہیں یا کسی ریناؤنڈ جگہ پہ کسی عہدے پہ فائز ہیں؟
2: ہاں بالکل، ہمارے ابھی چونکہ ڈپارٹمنٹ اتنا پرانا نہیں ہے، وی ڈونٹ ہیو ٹو مینی الومنائی یٹ، ہمارا ابھی صرف دو بیچ گریجویٹ ہوئے ہیں، لیکن ڈسپائٹ دیٹ ہمارے اسٹوڈنٹس بڑی اچھی پہنچ چکے ہیں۔ فار ایگزامپل میڈیا ہاؤسز میں کام کر رہے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس باہر پہ پڑھنے جا چکے ہیں۔ ابھی صرف پچھلے سال ہی ہمارے دو اسٹوڈنٹس، حالانکہ ہمارے کوہارٹ از ناٹ ویری لارج، اس کے باوجود ٹو اسٹوڈنٹس آر اسٹڈیئنگ آن فلی فنڈیڈ اسکالرشپس ان فارن کنٹریز۔ ایک اسٹوڈنٹ ہماری ٹرکی میں فلی فنڈیڈ اسکالرشپ پہ ہیں، اور ایک ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہنگری میں فلی فنڈیڈ اسکالرشپ پہ ہیں فار ڈوئنگ اے ماسٹرز ڈگری۔ تو یعنی یو سی پی از اے گریٹ پلیس ٹو گو اینی ویئر، اٹس اے اسپرنگ بورڈ، اگر آپ باہر جانا چاہیں، فنڈنگ بھی لینا چاہیں تو یہاں اسٹوڈنٹس کو ملتی ہے، اور ملک کے اندر بھی کام کرنا چاہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ مجھے ابھی ملا کچھ دن پہلے، اور وہ ہی واز مائی اسٹوڈنٹ فرام دی ایٹھ سیمسٹر لاسٹ ایئر میں تھا، اور وہ ماشاء اللہ نکلتے ساتھ سنتا ہے کہ سر میری تنخواہ آلریڈی 1.5 لاکھ روپے ہے، اور اب اس کو گریجویٹ ہوئے لٹرلی ابھی کچھ 2 ماہ ہوئے تھے۔ تو ماشاء اللہ یو سی پی کے اسٹوڈنٹس دے آر ڈوئنگ ویری ویل۔ بالکل۔
1: اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے جو بندہ میڈیا پڑھتا ہے وہ ایز اے جرنلسٹ کام کر سکتا ہے، ایز اے نیوز اینکر کام کر سکتا ہے، تو سر جو آئی آر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھے بتائیے گا سر کہ کس شعبے میں جا سکتے ہیں، کیا کیا مارکیٹ اپرچونیٹیز اور کیا کیا جاب اپرچونیٹیز ہیں جو وہ اویل کر سکتے ہیں؟
2: پولیٹیکل سائنس اینڈ آئی آر، یہ آئی مین دیر از اے ویری وائڈ ارے آف ایریاز جہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو شوق ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، وہ جنرلی سول سروس کا ہوتا ہے۔ تو جنرلی اسٹوڈنٹس جو پولیٹیکل سائنس اور آئی آر پڑھتے ہیں، ان کا سکسیس ریٹ ہمارے سول سروس ایگزام میں بہت ہائی ہوتا ہے، چاہے وہ سی ایس ایس کا ایگزام ہو یا پی ایم ایس کا ایگزام ہو، اسٹوڈنٹس دے جنرلی ڈو ویری ویل۔ اور آپ اگر دیکھیں جو پاس اسٹوڈنٹس پاس ہوتے ہیں سی ایس ایس پی ایم ایس میں، اکثر لوگوں نے پولیٹیکل سائنس یا آئی آر رکھا ہوا ہوتا ہے، چونکہ یہ جو سی ایس ایس کا ایگزام آپ کا ہے یا پی ایم ایس کا، اس میں بڑا ہیوی ایمفسس ہوتا ہے ہسٹری پہ، پالیٹکس پہ، کرنٹ افیئرس پہ، انٹرنیشنل افیئرس پہ۔ تو پولیٹیکل سائنس پڑھنے سے بیسکلی آپ کی سی ایس ایس کی تیاری ساری ہو چکی ہوتی ہے، اور جب آپ گریجویٹ کرتے ہیں آپ کے آدھے سبجیکٹ سی ایس ایس کے تیار ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک ایریا ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹس بڑے شوق سے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ میڈیا اسٹڈیز، آئی آر پول سائنس کے اسٹوڈنٹس میڈیا میں بھی بہت آسانی سے جا سکتے ہیں، بیکاز ان کو دنیا کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو میڈیا میں آسانی سے جا کے وہ اینکر پرسن یا انالسٹ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر جنرل سبجیکٹس چونکہ انہوں نے پڑھے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہر ایریا اوپن ہوتا ہے۔ آئی مین فار ایگزامپل آپ نے کوئی جنرل مینیجریل جاب کرنی ہے، اٹ ڈز ناٹ ریکوائر اینی اسپیسیفک اسکل، تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ سب ایریاز بھی اوپن ہیں، مینجمنٹ، بزنس کے اندر، کارپوریٹ ورلڈ کے اندر۔ میرے بہت سے جو جنہوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی تھی وہ کارپوریٹ جابس بھی کر رہے ہیں۔ وہ آپ کے پاکستان میں ڈیولپمنٹ سیکٹر بہت بڑا ہے، جہاں پہ آپ کا این جی او سیکٹر ہے، آئی این جی اوز ہیں، گورنمنٹ سیکٹر ہے، کنسلٹنگ ہے، اس میں اسٹوڈنٹس بہت سارے جاتے ہیں، اور ہمارے اسٹوڈنٹس بھی وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے کام کر رہے ہیں۔
1: ویل دیٹ از گریٹ ٹو ہیئر سر، کہ ایک جو ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کا جو ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت زیادہ جاب اپرچونیٹیز کو جو ہے وہ اویل کر سکتا ہے، دیٹ از ویری نائس ٹو ہیئر سر۔ اچھا سر، موونگ آن، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ایک ایڈمیشن کیمپین کے حوالے سے شو کیا جا رہا ہے، تو میں آپ سے ایڈمیشن کے کرائیٹیریا کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جس جو میرے لسنر نے ابھی ابھی انٹرمیڈیٹ پاس کیا ہے، سر کیا کرائیٹیریا ہے اس کا، کیا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے کہ وہ ہیومینٹیز آف سوشل ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کی فیکلٹی کے اندر ایڈمیشن لے سکتا ہے، مطلب اس کو کتنے انٹرمیڈیٹ کے مارکس چاہیے اور کیا اسکالرشپ وہ اویل کر سکتا ہے؟
2: ہاں، اس میں ہم جو انڈر گریجویٹ پروگرام ہے اس میں کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے سبجیکٹس پڑھے ہوئے ہوں۔ اگر آپ نے سائنس پڑھی ہے یا آرٹس پڑھے ہیں، سب اسٹوڈنٹس اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اور جہاں تک مارکس کی بات ہے، آئی تھنک یو نیڈ ٹو اسکور 50% مارکس، جو آپ نے اگر میٹرک ایف ایس سی میں لیے ہیں تو آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے۔ جی بالکل۔
1: اچھا سر، ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو आई गेस द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, जो कि ये है कि लाहौर में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, UMT है, UOL है, बहुत ज़्यादा फैकल्टीज़ जो हैं वो ये वाले सब्जेक्ट्स ऑफर करवा रही हैं. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो UCP है, UCP ऐसा क्या काम कर रहा है जो कि हमें जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे सेट अपार्ट करता है? हम क्या ऐसा यूनिक दे रहे हैं, क्या हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है?
2: आई थिंक जो चीज़ यूनिक है हमारे प्रोग्राम के बारे में और हमारे कैंपस के बारे में वो ये है कि जो एक्सपोजर स्टूडेंट्स को यहाँ मिलता है वो आई थिंक इनके कंपेटिटर्स में नहीं मिल सकता. फॉर एग्जांपल हमने पिछले एक साल में जितने ज़्यादा इवेंट्स करवाए हैं और जितने अहम डिग्निटरीज हमारे इवेंट्स में आते हैं, फॉरन अभी हमने वी हैड अ वेरी लार्ज कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी, तो वी हैड स्कॉलर्स फ्राम सिंगापुर, स्कॉलर्स फ्राम इंडिया, स्कॉलर्स फ्राम पोर्चुगल, स्कॉलर्स फ्राम इंग्लैंड, फ्राम अमेरिका स्कॉलर्स आए थे. They spent 3 days here. They interacted with the students. Students were part of the whole, engagement. बल्कि students ही हमारे events करवाते हैं. हमारी जो faculty है उसका emphasis सारा इस बात पर है कि students को आगे लेके आया जाए. तो उसके अलावा हमारे पास अपने पाकिस्तान के अपने important politicians, speaker of the Punjab Assembly और इस तरह के लोग भी उस conference में आए थे. Similarly, last time हमने पिछले साल we had a conference on climate change. और उसके अंदर भी इसी तरह global scholars वगैरह आए थे और important senators आए थे और ministers आए थे. और स्टूडेंट्स उनसे खुद मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं. इट्स अ वेरी ओपन फ्रैंक एनवायरनमेंट. तो जो एक्सपोजर स्टूडेंट्स को यहाँ मिलता है और जो हमारी अपनी स्ट्रेंथ ऑफ द फैकल्टी इटसेल्फ, हमारे पास जो फैकल्टी मेंबर्स हैं हाईली क्वालिफाइड, मोस्ट ऑफ देम आर फॉरन एजुकेटेड, और उसकी वजह से स्टूडेंट्स को वो हेल्प कर लेते हैं अगर स्टूडेंट्स भी बाहर पढ़ना जाना चाहें या मार्केट में, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिशनर्स भी हैं हमारी फैकल्टी में. तो इफ़ दे डोंट वांट टू स्टडी फर्दर बट दे वांट टू गो इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड इमीडिएटली, उसके लिए भी हमारे फैकल्टी के बड़े अच्छे नेटवर्क्स बने हुए हैं और स्टूडेंट्स आसानी से फिर मार्केट प्लेस में जाके अपनी जॉब वगैरह ले सकते हैं.
1: वेल दैट इज़ वेरी गुड टू हियर सर. अच्छा सर, आपने शुरू में मैंशन किया था कि जो फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज है वो एक छोटी फैकल्टी है. तो सर मुझे ये बताइएगा कि फ्यूचर गोल्स क्या हैं इस फैकल्टी को लेकर, क्या आप इसको ब्रॉड करना चाहेंगे या क्या फ्यूचर गोल्स आपने सेट किए हैं कि हमने इस डिपार्टमेंट को, जो ये फैकल्टी है, उसको यहाँ तक लेके जाना है?
2: हाँ बिल्कुल, वी आर वेरी एम्बिशियस एंड वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह. हमने क्या किया है कि पिछले बहुत कम वक्त में हमने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से हम मास्टर्स पे भी आ गए और हमने अभी रिसेंटली PhD भी लॉन्च कर दिया IR में, और पॉलिटिकल साइंस का BS भी इतना पुराना नहीं है और हमारा प्लान है कि उसमें भी हम मास्टर्स स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह फिर PhD की तरफ भी जाएंगे. तो हमारा प्रोग्राम और हमारी फैकल्टी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है. आई थिंक वी विल डू वेरी वेल एंड वी आर डूइंग ऑलरेडी वेरी वेल. तो स्टूडेंट्स हैव ग्रेट प्रॉस्पेक्ट्स व्हेन दे कम टू UCP.
1: सर मुझे एक और बात बताइएगा कि हमने देखा है कि स्टूडेंट्स हमेशा ना टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने से डरता है कि टीचर को कोई बात बुरी ना लग जाए. तो सर मुझे इस हवाले से बताइएगा कि UCP का या जो आपकी जो फैकल्टी है उसका कैंपस कल्चर किस तरह का है? स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्रीली टीचर से आके बात कर सकते हैं उनके ऑफिस उनके ऑफिस आवर्स के दरमियान या उनके पास उनके ऑफिस में जाके बात कर सकते हैं, इस तरह का ये पॉसिबल है?
2: जी जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स के साथ हमारा तो बहुत फ्रैंक रैपोर्ट होता है. हम स्टूडेंट्स को We have office hours pretty much every day. Students can come meet us in our office hours. आके हमसे गपशप लगा सकते हैं, अपने मसाइल डिस्कस कर लेते हैं. उसके अलावा वी हैव अवर ओन मेंटरशिप प्रोग्राम. तो एवरी स्टूडेंट हैज़ ए फैकल्टी मेंटर एडवाइजर जो कि थ्रू आउट द 4 years विल स्टे अटैच्ड विद दैट फैकल्टी मेंबर, और जो भी उसको पर्सनल मसाइल आए या एकेडमिक मसाइल आए दे कैन ईजिली गो एंड टॉक टू स्टूडेंट्स. मेरे पास स्टूडेंट्स आते रहते हैं, हम गपशप भी लगाते हैं, मसाइल पर बात भी करते हैं, मैं उनको बुक रिकमेंडेशन भी देता हूँ, एंड कभी कभी वो मेरे पास दे कम एंड सिट, दे हैव टी विद मी एंड वी हैव अ लॉन्ग चिट चैट सेशन. तो बिल्कुल फैकल्टी इज ऑलवेज अवेलेबल एंड हैप्पी टू इंटरेक्ट विद.
1: Well, that is great to hear, sir. अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि जो मेरे लिसनर्स सुन रहे हैं जो कि अभी फ्रेशली जिन्होंने इंटरमीडिएट पास किया है और वो चूज करना चाह रहे हैं कि कौन सी फैकल्टी के अंदर एडमिशन लिया जाए, सर क्या जो IR है उसको क्यों चूज किया जाए? ये वाली फैकल्टी जो है फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज उसको क्यों चूज किया जाए?
2: हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है, और जाहिर है स्टूडेंट्स हम अक्सर ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन होती है जब वो स्कूल से या कॉलेज से निकलते हैं मैट्रिक FSC करके कि आगे हम क्या करें. बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता होता है उन्हें जिंदगी में क्या करना है. अक्सर स्टूडेंट्स बेचारे यूनिवर्सिटी में आके भी वो अभी सोच रहे होते हैं कि हमें पता नहीं है व्हाट शुड वी बी स्टडीइंग और शुड वी रियली बी स्टडीइंग व्हाट वी आर स्टडीइंग. तो कैसे पता चले कि क्या पढ़ना चाहिए? आई थिंक इसमें हमें एक तो इंसान की ज़रूरियात को देखना ज़रूरी है, दूसरा मुस्तकबिल को देखना ज़रूरी है. अक्सर हम देखते हैं कि लोग, अब जाहिर है क्योंकि मेरा ताल्लुक ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज के साथ है तो मैं आई विल टेल यू गिव यू दैट परस्पेक्टिव. अक्सर हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई फ्यूचर तो टेक्नोलॉजी का है, फ्यूचर कंप्यूटर साइंस का है, आईटी का है, एआई का है, तो सब लोगों को यही पढ़ना चाहिए। और ऐसे लगता है कि जैसे हमारे सब्जेक्ट्स फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, यू नो, सोशियोलॉजी, ये तो उसका ऑपोजिट सब्जेक्ट्स हैं, तो ये क्यों पढ़ने चाहिए। एक्चुअली अगर मैं आपके लिसनर्स की तवज्जो इस तरफ करवा सकूं तो उनको ये पता चले कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया में एक एआई रेवोल्यूशन आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन आ रहा है, और अब हमारे स्टूडेंट्स भी, बच्चे अब तो एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटे बच्चे इवन फ़ोन पे वो मेटा का एआई इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लोग चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, और एआई सीम्स टू बी टेकिंग ओवर। और जिस वक्त दुनिया में लोग अहले नज़र हैं जो दुनिया को बड़े गौर से देख रहे हैं, उनका नब्ज, उनकी नब्ज जो है वो माशरे की उस पल्स पे है, तो वो ये बता रहे हैं और ये हमें नज़र भी आ रहा है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रेवोल्यूशन है, इसने आहिस्ता आहिस्ता टेक्निकल एरियाज़ को नापैद कर देना है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, ग्लोबली भी देख रहे हैं कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, उनके काम आर बीइंग एनक्रोच्ड अपॉन बाय एआई। तो अभी मैं एक मीटिंग में था रिसेंटली, उसमें पता ही चला कि पाकिस्तान में जो आपकी आईटी की जॉब्स हैं, एक्चुअली दे आर इन डिक्लाइन। पिछले साल पाकिस्तान में 80,000 जॉब्स थी कंप्यूटर साइंस की, इस साल सिर्फ 30,000 जॉब्स हैं। और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ दे आर यू नो डिशिंग आउट सो मेनी आईटी ग्रेजुएट्स। और उसकी वजह क्या है, एक तो यह है कि आईटी चूंकि सब लोग पढ़ना चाहते थे तो सब लोग उसमें चले गए, ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा हो गए, ज़ाहिर है मार्केट की एक लिमिटेशन होती है ना, तो उतने अब एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी मार्केट में नहीं है, एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि एक्चुअली एआई इतनी स्मार्ट है कि वो खुद ही कोड लिख लेती है, खुद ही वेबसाइट बना लेती है, खुद सॉफ्टवेयर बना लेती है, तो कंप्यूटर साइंस वालों ने, बेचारों ने खुद ही एक फ्रैंकेंस्टाइन मॉन्स्टर बना लिया अपने लिए, वो अपने आप को ही बेरोजगार किए जा रहे हैं। उन्होंने ऐसी चीज़ बना दी है जो उन्हीं को गैर जरूरी कर देगी और कर रही है। और दुनिया में अब ये बात हो रही है कि 2030 तक शायद एआई कंप्लीटली आपके दुनिया को बदल चुकी होगी, पर्टिकुलरली एम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड को बदल चुकी होगी, आपकी जॉब शायद किसी को जरूरत ही ना हो। इवन टेक्निकल जॉब्स लाइक डॉक्टर की जॉब्स हैं, अभी रिसेंटली आई वाज रीडिंग अबाउट अ कॉन्फ्रेंस हैपेंड इन द यूएस, मेडिकल कॉन्फ्रेंस, उसमें वो ये मेडिकल डॉक्टर्स जो रिसर्च करते हैं एआई के ऊपर, वो ये बता रहे थे कि हमारे अब एआई के जो एजेंट्स हैं, जो एआई बॉट्स हैं, जो हमारे पास टूल्स हैं, वो रेडियोलॉजी में जो स्कैन्स किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन ब्रेन स्कैन्स या बॉडी के स्कैन्स, जिसको देख के डॉक्टर बताता है कि आपको मसला क्या है, वो कहते हैं कि हमारे जो एआई की एनालिसिस है उन स्कैन्स की, वो उसकी एक्यूरेसी 95% है तकरीबन, और जो एक बहुत बड़ा पुराना मंजा हुआ डॉक्टर होता है उसकी एक्यूरेसी 60% होती है। यानी एआई इज़ बेटर देन अ रियल डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर एट जजिंग योर डिजीज। तो यानी आहिस्ता आहिस्ता ही डॉक्टर्स को भी गैर जरूरी कर देगी। तो जहाँ पे कंप्यूटर साइंटिस्ट की जॉब भी चली गई, साइंटिस्ट की जॉब भी चली गई, डॉक्टर की जॉब भी चली गई, एआई ने सब कुछ करना शुरू कर दिया। अकाउंटेंट भी आपको नहीं चाहिए, एआई आपके सारे अकाउंट्स देख सकता है, कर सकता है, ऑलरेडी कर रहा है, और इंप्रूवमेंट्स कितनी स्पीड से आ रही हैं। अभी दो हफ्ते पहले चैट जीपीटी 5 आ गया, या आगे ग्रॉक 4 आ गया है, तो ये चीज़ें आ रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर इन एरियाज में जाना तो खतरनाक है, तो फिर कहाँ पर जाएँ? जब दुनिया के ऊपर एआई की हुकूमत होगी और रोबोट्स आ जाएंगे, और वो आ रहे हैं ऑलरेडी, आपको पता है टेस्ला की फैक्ट्रियों में रोबोट ज़्यादा हैं, इंसान कम है, तो फिर उस दुनिया में इंसान को ज़रूरत महसूस फिर साइंस की नहीं होगी, आईटी की नहीं होगी, बल्कि ज़रूरत उसको महसूस होगी इंसानियत की। ही विल फील लाइक मुझे ह्यूमन कनेक्शन चाहिए। हर जगह रोबोट्स हैं, हर जगह टेक्नोलॉजी है, हर जगह यू नो कंप्यूटर एजेंट्स हैं, तो इंसान कहाँ पे है? वहाँ पे उसका दिल करेगा कि मैं कोई पोइट्री पढ़ूँ, कोई हिस्ट्री पढ़ूँ, कोई फलसफा पढ़ूँ, कोई इंसानी ताल्लुक बनाऊँ। एरिस्टोटल ने कहा था ना कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो उसकी ह्यूमन नीड्स हैं। तो वहाँ पे फिर दिस इज़ वेयर यू स्टडी ह्यूमैनिटीज़, एंड ऑब्वियसली ह्यूमैनिटीज़ का एक जो ग्लोबल स्केल है वो पॉलिटिक्स और आईआर है। तो वहाँ पे फिर इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ वेयर रियली आई थिंक फ्यूचर में इवन फ्रॉम अ करियर परस्पेक्टिव यू विल बी बेटर ऑफ स्टडिंग ह्यूमैनिटीज़, पॉलिटिक्स, आईआर देन स्टडिंग इवन कंप्यूटर साइंस। दिस इज़ माय व्यू।
1: थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर इनसाइट, एंड आई गेस ये सिचुएशन काफ़ी अलार्मिंग है, जिस तरह से आपने बताया कि एआई वुड बी टेकिंग ओवर द ऑल द वर्ल्ड।
2: इट इज़ ऑलरेडी टेकिंग ओवर, आप देख सकते हैं।
1: इट इज़ ट्रू सर, इट इज़ ट्रू। दिस इज़ योर होस्ट साइनिंग ऑफ, कीप लिसनिंग टू FM 92.6। आप सुन रहे थे फैकल्टी आवर, और ये एपिसोड इख्तिताम की तरफ पहुँचती है। दिस इज़ योर होस्ट साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP की दुनिया.
1: आप सुन रहे हैं हमारी आवाज़, हमारी पहचान FM 92.6.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

इस सुरौर ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: Fun, entertainment, news, knowledge, 24/7, only on UCP, FM 92.6, UCP Ki Duniya.

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya. Fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP ki duniya.
1: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की. ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की. तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: सूरत आपकी दुनिया हमारी दुनिया यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6।
1: मौसीकी के सुर और ताल,
2: सुर और ताल,
1: ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार
2: और तकरार,
1: सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
2: मस्ती के पास,
1: सिर्फ FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP की दुनिया।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

صدای لاهور است، این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस,

0: when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: 90166 on what?
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya, FM 92.6.
1: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
2: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
3: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
1: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
4: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।